0: ती झेमर सर संगीती सदरुन बक्ष राजे साहेब
1: असिन शादी कोर
0: ये जगह का नाम सिंधी का सिंधी शादी कोर ये जो दमुला वाला हमारा